FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पंचमी तिथि तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी

0: से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हर महादेव, शिव शंकर, त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो।

प्रभु का नाम बड़ा मीठा है और जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।

विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना उदित नारायण, राजेंद्र काचरू, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। उन्होंने सन 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। सूक्तियों के अनुसार उनके मौलिक विचारों में उल्लेखनीय है, मैं ये बहुत गर्वोक्तिपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद ये ऐसे बच्चे को उसके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे। डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक ही नहीं, एक शिक्षक भी थे। शिक्षा से उनका गहरा नाता था। वे अपने पिता जैनुलाउद्दीन से आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। उनके पिता ने उन्हें बताया कि नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं है। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते थे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व पर अपने पिता के समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की स्पष्ट छाप थी। डॉक्टर कलाम ने उल्लेख किया है कि उनके पिता आध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को तमिल भाषा में बहुत सरल ढंग से समझा देते थे। डॉक्टर कलाम ने उल्लेख किया है कि उनके पिता ने उनसे कहा, उनके वक्त में खुद उनके स्थान पर जो भी वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुंचे हैं, अच्छे या बुरे, हर इंसान भी उसी तरह दैवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसके एक विशेष हिस्से के रूप में होता है, तो हम संकटों, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। उनका कहना था कि मैंने उन बुनियादी तथ्यों और सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया जिसे मेरे पिताजी ने मेरे सम्मुख रखा। मुझे संतुष्टि का आभास हुआ कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है और सही रास्ता दिखाती है। डॉक्टर कलाम से जब एकांत में उनके पिताजी का वार्तालाप होता, तब पिताजी के प्रदत्त उत्तर से उनके अंदर एक नई ऊर्जा और अपरिमित उत्साह भर जाता था। उनके पिता ने उनसे कहा, जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत होती है। जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बार बार तड़पने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास के समान होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। डॉक्टर कलाम अपने आध्यात्मिक मित्र जलालुद्दीन से अत्यधिक प्रभावित थे। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसी बातें किया करते जैसे ईश्वर के साथ उनकी कामकाजी भागीदारी हो। वे ईश्वर के सम्मुख अपने सारे संदेह इस प्रकार रखते थे जैसे उनका निराकरण वो पूरी तरह कर देगा। मैं जलालुद्दीन की ओर एक टक देखता और फिर रामेश्वरम के

0: शिव मंदिर के चारों ओर जमा श्रद्धालुओं, तीर्थ यात्रियों की उस भीड़ को जो समुद्र में डुबकियां लगा रही होती और फिर धार्मिक रीतियों से पूजा पाठ करती तथा उसी अज्ञात के प्रति प्रार्थना करती पूरी श्रद्धा और आदर से, जिसे हम निराकार सर्वशक्तिमान मानते थे। मुझे इसमें कभी भी संदेह नहीं रहा कि मंदिर में की गई प्रार्थना जहां जिस तरह पहुंचती है, ठीक उसी तरह हमारी मस्जिद में पढ़ी गई नमाज भी वहीं जाकर पहुंचती है। डॉक्टर कलाम के अनुसार सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार। आलेख डॉक्टर विनोद बनर्जी का था और वाचन स्वर था राजेश शर्मा का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हुआया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था ए हरिहरन और साथियों ने। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में। आज का विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य एवं सोइल हेल्थ कार्ड और विशेषज्ञ होंगे विजय सिंह नौलखा। 7 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का, और 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। बजकर 31 मिनट का समय होगा आपका अपना कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद लेंगे आज कवि मुख सुक्रम में कविवर देवकी नंदन कुमेरिया के काव्य पाठ का, साथ ही आनंद लेंगे कुछ ब्रज लोक गीतों का, और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमे। 9 बजे आप सुनेंगे पर्यावरण कार्यक्रम आपदा प्रबंधन और बचाव के उपाय। वार्ताकार LS आचार्य होंगे और आपसे भेंट करेंगे OP सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा। 9:30 पर आप सुनेंगे ब्रज दर्पण कार्यक्रम में रेडियो रिपोर्ट गुरु पूर्णिमा पर राहुल कौशिक सेवायत लक्ष्मीनारायण मंदिर गोवर्धन और श्रद्धालुओं के अनुभव। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 11 बजे का समय रहेगा आपका फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का।

बारह बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे कन्हैया लाल रसिक। 10:00 पर आप सुनेंगे देशगान। 1:15 पर आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम वनिता लोक। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा मस्तिष्क एवं नशों के रोग कारण एवं निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हम मृदा स्वास्थ्य और सॉइल हेल्थ कार्ड विषय पर जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य आखिर है क्या। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का मिला जुला प्रभाव जो कि उत्पादकता के रूप में परिलक्षित होता है, उसे मृदा स्वास्थ्य कहते हैं। भूमि की उर्वरता जांचने तथा संतुलित एवं सूक्ष्म उर्वरक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए मृदा जांच अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में अधिकांश कृषक भाई अपने खेतों में उर्वरकों का उपयोग कमी के आधार पर नहीं बल्कि बाजार की उपलब्धता एवं अपनी क्रय शक्ति के आधार पर करते हैं। मृदा जांच के द्वारा इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। मृदा का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के साथ साथ मृदा की भौतिक दशा, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता, कार्बनिक पदार्थों तथा किसी फसल के लिए भूमि की उपयुक्तता का भी पता चलता है। आज के बदले परिवेश में जहां एक तरफ कृषि उत्पादन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन भी आवश्यक हो गया है। मृदा परीक्षण के द्वारा उर्वरकता का मूल्यांकन एवं पोषण संबंधी समस्या का आकलन किया जाता है। मृदा के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में मृदा का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्षरण तथा मृदा प्रदूषण प्रमुख है। मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग के अतिरिक्त मृदा की कार्बनिक स्तर को सुधारना भी अति आवश्यक है, जो कि मिट्टी में जैविक पदार्थों के समावेश द्वारा ही संभव है। इसकी निहायत कमी आजकल महसूस की जा रही है। लगातार सघन खेती, कार्बनिक अंश की कमी के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है। मिट्टी में बहुपोषण तत्वों की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जल धारण क्षमता में कमी आदि के कारण इसका प्रबंधन जरूरी हो गया है। अब बात आती है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं। सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं तथा सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड में सिफारिश अनुसार बुवाई की जाने वाली फसल में देसी खाद व उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग करें, सही तरीके से सिफारिश के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसके लिए अपने खेत को जानें, उसकी परिस्थिति को पहचानें। खेत में समय समय पर भ्रमण करें, उपजाऊ मिट्टी का कटाव रोकें, मृदा संरक्षण करें। फसल चक्र में दलहनी फसलों को महत्व दें, वर्ष में कम से कम एक दलहनी फसल अवश्य लें। खेत को यथासंभव समतल रखें, मिट्टी को भुरभुरा रखें, ढेले तोड़ें तथा मिट्टी को कठोर होने से बचाएं। 3 वर्ष में एक बार ढेंचा की हरी खाद करें। खेत पर ही कंपोस्ट खाद बनावें। प्रत्येक तिहाई भाग देसी खाद कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट द्वारा ही प्रदान करें। जीवाणु कल्चर से बीजोपचार करें। फसल अवशेषों को नहीं जलाएं बल्कि खेत में ही दबाकर गलाएं। गर्मियों में खेत की जुताई करें। जुताई सुबह के समय व ढाल के विपरीत करें। 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई देसी हल या हैरो से काट कर पाटा लगवाएं। वर्षा के जल को खेत में ही संरक्षित करें। नमी संरक्षण हेतु मिट्टी की ऊपरी पपड़ी तोड़ें तथा समय पर निराई गुड़ाई करें। फसलों को संतुलित पोषण दें। पोषक तत्वों का 1/3 भाग देसी खाद या कंपोस्ट तथा शेष उर्वरकों द्वारा देने पर ही पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत नमूनों की जाँच तथा कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण निशुल्क किया जा रहा है, अतः मिट्टी की जांच कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवावें एवं सिफारिश अनुसार खाद एवं उर्वरक का उपयोग कर उत्पादन व गुणवत्ता दोनों बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।
0: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मृदा स्वास्थ्य एवं सॉइल हेल्थ कार्ड विषय पर जानकारी। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना।

0: घोषणा समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अमेरिकादेशस्य राजदूतः माइक वाल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानाम् अष्टचत्वारिंशत् किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानु इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा।

अभी आपने सुना मुकेश को फिल्म सारंगा में, और आइए सुनते हैं ये सूचना। श्रोताओं, आज वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में आज सोमवार को 27 जुलाई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530-135 पर फोन करके और बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं, अथवा मोबाइल नंबर 9412-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिर दर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए पूछे सवाल डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन आज रहेगा सोमवार को 27 जुलाई और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफी के गाए फिल्म ब्रह्मचारी के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल।
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। कमर रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन बेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा।
2: हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में हुए वृहद पौधरोपण का भी उल्लेख किया।
2: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
0: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
2: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर

0: प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
1: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में हुए वृहद पौधरोपण का मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। वहीं बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करने पर ग्रुप की एक महिला सदस्य ने प्रसन्नता जताई।
2: जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा से विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर योजना की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल ही मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं जिले के उझानी रेलवे स्टेशन से कल कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लखनऊ के लिए नई ट्रेन शुरू होने से व्यापारी, मरीज और छात्रों सहित सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कल स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं ऋषिकांत सिंह चानबम ने इन खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के स्याना चौपला के निकट कल देर शाम हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से बिजनौर जा रहा एक 4-पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और दूसरी ओर से आ रहे एक अन्य 4-पहिया वाहन से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के अनुसार दुर्घटना में घायल करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा, रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्य।

नदियों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत हो है हमारो प्रिज माधुरी कार्यक्रम।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय मंजुल कुंज निकुंज की, रसपुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की बंसी पटकी, विपिनेश्वर की सुख साज की जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रजमंडल की ब्रजराज की जय। वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज की आ पावन धरा को नमन करें, वंदन करें और आए जुड़े सब ब्रज के वासी। डेरा परे लाख चौरासी, ब्रजवासी जब इकट्ठे है जाएं तो ब्रज को माधुर्य खूब खूब आनंदित करे है। और कार्यक्रम ब्रज माधुरी में भैयाओ या समय तो समूचे ब्रजमंडल में खूब खूब आनंद छा रहे हो है। गिरिराज जी जाओ तो मां परिक्रमा लग रही है, वृंदावन जाओ तो मां दर्शन आनंदित कर रहे हैं, निधवन जाओ तो वहां की सुंदर कंदरान के दर्शन सुंदर सुंदर सुगंध आनंदित कर रही है। यमुना किनारे जाओ तो यमुना जी के सुंदर सुंदर गीत गोविंद की लीलान के दर्शन वहाँ है रहे। और कहूँ जाओ अखाड़े पे जाओ, चबूतरान पे जाओ, गली में जाओ, मोहल्ला में जाओ, एक ही चर्चा है कवितान की, कई मुखसों क्रम की। तो आज अपने श्रोतान को कछु गुदगुदा में कछु आनंद दिवावे कार्यक्रम

0: कवि मुखसों में, कविवर देवकिंदन कुमेरिया के काव्य पाठ को आनंद लियो। सबसे पहले भैया
1: अभिमानी हो कर गया उनके स्वभाव के संबंध में। देखिए, पद प्रतिष्ठा मान और सम्मान को भूखो न में, और भूख है तो बस तेरो प्रसाद झूठो चाहिए। अब लो जाकू थाम के ही मैं ठड़ो हूँ द्वार पे, वो कृपा की कोर को धागो न टूटो चाहिए। स्वर्ग और गौलोक की चौं चाह में मन में करूं, ब्रजवासी स्वर्ग न चाहिए, स्वर्ग औ गौलोक की चौं चाह में मन में करूं, मोय तो दर्शन तिहारो नित अनूठो चाहिए। और तो भरोसे मैं कहूं कबहू न काहू सो डरूं, ओ मेरे ब्रजराज प्यारे तू न रूठो चाहिए। और ब्रजवासिन की चाह कहा होए कि घर घर वारी होए गोरी चाहे कारी होए, घर घर वारी होए गोरी चाहे कारी होए, पर गुण वारी होए मोहन खूटो चाहिए। और गाम गैल रेत होए पर थोरो खेत होए, गाम गैल रेत होए पर थोरो खेत होए, आंगन में गैयन को गढ़ो खूंटो चाहिए। लोरो एक बाल होए और ठुम कत चाल होए, भूरो भक्क होए न करू कारो कलूटा चाहिए। कर जप माल होए और में गोपाल होए, एक आस यही नाथ तू न रूठो चाहिए, तू न रूठो चाहिए। और आज को समय ऐसो विचित्र है गो है कि मैया बाप के प्रति श्रद्धा भाव तो है ही ना है, को यादव करेंगे तो स्वार्थ के कारण ही। तो एक चित्रण में आपके सामने रख रहे हूँ कि मैया मर गई है और मैया की याद को ही ना करो, काम को रो रहे हैं वो सब कि मैया मरबे को दुख नाए, मैया मरबे को दुख नाए, दुख तो आंगन को उझारे गो, मैया मरबे को दुख नाए, दुख तो आंगन को झारेगो, और दरबज्जे पे बैठो बैठो अब को कुत्तन ने तारेगो। मैया मरबे को दुख नाए, मैया मरबे को दुख नाए, दुख तो आंगन को झारेगो, और दरबज्जे पे बैठो बैठो को अब कुत्तन ने तारोगो। के घरवारी ऐसी मनमौजी, घरवारी ऐसी मनमौजी, जब चाहे पीहर भग जावे, घरवारी ऐसी मनमोजी, जब चाहे पीहर भग जावे, और नेक नेक सी बातन पे वो रणचंडी को रूप दिखावे, नेक नेक सी बातन पे वो रणचंडी को रूप दिखावे। रूसा मटकी के मौसम में, रूसा मटकी के मौसम में, को अब बच्चन को पारेगो, और दरबज्जे पे बैठो बैठो को अब कुत्तन ने तारेगो। मैया मरवे को दुख नाए, मैया मरवे को दुख नाए, दुख तो आंगन को झारेगो, और दरबज्जे पे बैठो बैठो को अब कुत्तन ने तारेगो। द्वे गैया द्वे बछरा बच्चिया, घर में चार चार चौपाए, द्वे गैया दो बछरा बछरी, घर में चार चार चौपाए, और दूध पियो पर न्यार फूसते कबहू न हमने हाथ लगाए, दूध पियो पर न्यार फूसते कबहू न हमने हाथ लगाए। को अब नित धार काढ़ेगो, को अब नित धार काढ़ेगो, को बिन को गोबर डारेगो, और दरबज्जे पे बैठो बैठो को अब कुत्तन ने तारेगो। मैया मरवे को दुख नाए, मैया मरवे को दुख नाए, दुख तो आंगन को झारेगो, और दरबज्जे पे बैठो बैठो को अब कुत्तन ने तारेगो। आए चले है घर में दिन भर चाय चले है घर में, झूठे बासन लुढ़कत डोले, दिन भर चाय चले है घर में, झूठे बासन लुढ़कत डोले। मैया हती माज वो लेती, मैया हती माज बो लेती, अब तो कुत्ता चाटत डोले। नौकर रखें खूब ले तन

0: का बूस बीस बीस बीस फुड़का फारेगो और दरबज्जे पे बैठो बैठो को अब कुत्तन ने तारेगो। मैया मरवे को दुख नाए, मैया मरवे को दुख नाए, दुख तो आंगन को झारेगो और दरबज्जे पे बैठो बैठो अब को कुत्तन ने तारेगो। अंत में कि अंत समय भारी बुखार हो मैयाए, अंत समय भारी बुखार हो जेऊ बातन हमें बताई, अंत समय भारी बुखार हो जेऊ बातन हमें बताई और जीवन भर ना लई दवाई खर्च कराई एक न पाई, जीवन भर ना लई दवाई खर्च कराई एक न पाई, सोच व्याप रहो जेई मोकू, सोच व्याप रहो जेई मोकू, घर को काज कौन सारेगो और दरवाजे पे बैठो बैठो कुआ कुत्तन ने तारेगो। मैया मरवे को दुख नाए, दुख तो आंगन को झारेगो और दरवाजे पे बैठो बैठो कुआ कुत्तन ने तारेगो। ब्रज में पंडान की बिचारेन की बड़ी मुसीबत है। एक पंडा जी हमारे पास आए और बोले, पंडा जी महाराज एक आए अपने पास, के मन की पीरा कह रहे है रहे अधिक उदास। विनोद है ये। पंडा जी बोले के पुरखन के पाप ताप व्यापो है कर्मन को, पुरखन के पाप ताप व्यापो है कर्मन को, पंडा को जन्म लियो भारी दुख पामे हैं, पंडा को जन्म लियो भारी दुख पामे हैं, दांतन के बीच जीव लंका में विभीषण जो तैसे ही दबे दबे दरन कुंभता में हैं, जेते जिजमान तेते नंदन गुमान भरे बड़े एकड़ी में बात करें, जेते जिजमान तेते नंदन गुमान भरे भारी इतरा में नाह सीधे बतरा में हैं, के नोन के न दाता नोन के न दाता तने कहें अन्न दाता हाय, और सूम सट तेरे वृक्ष मेवा को बतामे हैं, सूम सट तेने वृक्ष मेवा को बतामे हैं, के पूछते हैं नाम तो वे नाक को सुकुर लेत। हम तो पूछे मैया कौन हो कहाँ ते आए हो, के पूछते हैं नाम तो वे नाक को सिकोर लेत, और नाम धाम पूछें तो सीधे सतरामे हैं, चोर हैं लवार हैं के ऊंचे अपराधी को, चोर हैं लवार हैं के ऊंचे अपराधी को, और काहे घबरा में जो ये पतो ना बता में हैं, नंदन जू दिखे नहीं एकहू तो अच्छो ढंग, इनमें एकहू तो अच्छो ढंग, और बोल चाल कर्म सब उल्टे ही लिखा में हैं, बहन और भैया हैं के लोग और लुगैया हैं जे, बहन और भैया हैं के लोग और लुगैया हैं जे, बहुत ध्यान लावें पे समझ न पामे हैं, के नाई और धोबी को नेगहू चुका में नाए, और पंडित को पान फूल दे के टरका में हैं, और लेते ही जन्म जाने गोद में उठायो लाल, ऐसी दाई माई को तो भूल सब जामे हैं, नंदन जू रीत रीत रीत नीत संस्कार सुन भये, और हिजड़ा को दे हजार तारी पिटबा में हैं, बैंड की धुनन पे जे नोट बरसा के खूब, स्वांगिया की तरिया ते देह मटका में हैं, स्वांगिया की तरिया ते देह मटका में। ये आजकल को व्यावर्तन के तमाशे।
1: या भैया आपने आनंद लियो कवि मुख्य क्रम में देव के अंदन को मेरिया के या काव्य पाठ को, और अभी हमने चर्चा करी गिरिराज में बड़ा आनंद आ रहा है। गोवर्धन में तो चारों तो शोभित सदा चाके संत समाज, सब देवन को मुकुट मड़ी श्री राजा गिरिराज। गिरिराज जी की लीला दर्शन करें और आनंद लें या ब्रज लोकगीत को।